0: आइए सामने पहले आज की खास खास खबरों का खुलासा सुनते हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगन वस्ती एशिया यूरोप को मिलाने वाले तारीखी शहर रेशम का जदीद वर्जन मिडल कॉरिडोर के हवाले से कलीदी पैगाम आती है।
1: अमरीका ने कहा है कि इसराइल और लुबनान के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत रहे हैं।
0: चीन का कहना है कि सदर शी और सदर ट्रंप ने बैन अक्वामी व इलाकाई अमूर पर राबते हम आहंगी को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया है।
1: हजारों इसराइली इंतहा पसंदों ने मकबूजा मशरक़ अल-क़ुद्स में नाम नहाद यौमे यरूशलम मार्च की।
0: और ओमान के खुले समंदर में भारतीय परचम बरदार तजारती बहरी जहाज पर हमला किया गया।

आम चौदह कार को उम्मा ने हुक्काम ने जिंदा बचा लिया है। अभी तक किसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं किया। उम्मा ने इस वाकये की वसी पाने पर तहकीकात शुरू कर दी है। खत्ते में बहरी आमदोरफ्त सिक्योरिटी पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: हजारों इसराइली इंतहा पसंदों ने मकबूजा मशरक अलकुद्स के कदीम शहर की तंगलियों में नाम नहाद योम यरूशलम मार्च की और अरबों को मार दो और अरबों के गांव जला दो जैसे नारे लगाए। इस दौरान मुतअद्दिद फिलिस्तीनी रिहायशी अपने घरों में बंद रहे। हर साल दसियों हजार और ज्यादातर नौ उम्र और नौजवानों पर मुश्तमिल इसराइली इंतहाई दाएं बाजू के अफराद 1967 की अरब इसराइल जंग में इसराइल की फतेह और मशरक अलकुद्स पर गैर कानूनी कब्जे का जश्न मनाने के लिए मकबूजा मशरक अलकुद्स में मार्च करते हैं। ज्यादातर फिलिस्तीनी आबादी पर मुश्तमिल मशरक अलकुद्स पर इसराइली कब्जे को अक्वामे मुत्तहदा तस्लीम नहीं करती। गुज़श्ता बरसों में ये सालाना मार्च बारह तशद्दुद में तब्दील होती रही और इसराइली इंतहा पसंद ग्रोह और शर पसंद अनासर फलस्तीनियों को नस्ल परस्ताना नारों, धमकियों और हमलों का निशाना बनाते रहे हैं। इस साल की मार्च 28 फरवरी को शुरू होने वाली और ईरान के खिलाफ अमरीका इसराइल जंग और गजा में जंगबंदी के साय में की गई है। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल तकरीबन रोजाना इसकी खिलाफ वर्जियां कर रहा है। कदीम शहर के इलाके वयादो लोरसुआ के फलस्तीनी रिहायशी मुस्तफा ने कहा है कि नौजवान इसराइली इंतहा पसंद इनके घर में दाखिल हुए, खिड़कियां तोड़ी और अरबों को मार दो के नारे लगाए। मुस्तफा ने कहा है कि ये एक सियाह दिन है, मैं घर में था, तकरीबन 20 आबादकार अंदर घुस आए, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिए, अगर आप इन्हें धक्का भी दें तो आपको जेल हो सकती है, यानी आप कुछ नहीं कर सकते।
0: सदर फ्रांस इमैनुअल मैक्रों ने इतराफ किया है, फ्रांस ने अफ्रीका में जीत तुर्क किया। चीन अमरीका जैसे हरीफों के मुकाबले में अपना सिर सूख हो दिया। फ्रांसी दारों कंपनियों की दाहिन पर महीद खुद इतमानी तकबर ने इसका सबब बनाई है। अफ्रीका बिजनेस फोरम के अख्तितामी इजलास से खिताब में मैक्रों ने कहा कि गुज़श्ता 25 सालों में फ्रांस को अफ्रीका में झटका लगा है। उन्होंने सुरक्षा को मामूल यहां तक मुस्बत करार दिया। उनका कहना था कि फ्रांसिस कंपनियां इंतजामी इदारे अफ्रीकी माल के साथ तारीखी रवावत पर हद से ज्यादा इन्हासार करते रहे, अपनी रकाबत बरकरार न रख सके। उन्होंने कहा वो समझते थे कि महसूस दायरा है जहां फ्रांस से होने का मतलब यह है कि हर चीज खुद बहुत आसानी से हल हो जाएगी। मैक्रों ने कहा अफ्रीकी मुल्क ज्यादा रकाबत के हम शराकत दारों की तरफ रजू करके माकूल इक्तिसादी फैसले कर रहे हैं। उन्हें तसव्वुरी इंकलाब का मुतालबा किया। फ्रांस ने कहा वह सिर्फ इमदाद देने की अमूदी मंतक तर्क करे, इसके बजाय मुसावात शराकत पर मबनी ताल्लुक कायम करे। मैक्रों ने कहा नई नुकतः नजर का महवर अफ्रीकी अकवाम के साथ मुश्तरक सरमायाकारी, मुश्तरक पैदावार, मुश्तरक ईजाद के इर्द गिर्द होना चाहिए।
1: स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने कहा है कि लामिन यामाल ने फलस्तीनी परचम लहराकर स्पेन का सर फखर से बुलंद कर दिया है। पेड्रो सांचेस ने बार्सिलोना फुटबॉल टीम के स्टार लामिन यामाल की जानब से चैंपियनशिप की तकरीबात के दौरान फलस्तीनी परचम लहराए जाने को सराहा और कहा है कि यामाल के इस अमल पर स्पेन को फखर है। दूसरी तरफ इसराइल ने लामिन यामाल पर बेबुनियाद इल्जाम की बौछार कर दी और इन्हें नफरत भड़काने का कसूरवार ठहराया है। 18 साल फॉरवर्ड ने पीर के रोज बार्सिलोना में अपनी टीम की मुसलसल दूसरी लालिगा चैंपियनशिप की खुशी में निकाली गई ओपन बस परेड के दौरान फलस्तीनी परचम लहराकर तवज्जो हासिल की है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स ने जुमेरात को बार्सिलोना के इस स्टार खिलाड़ी पर सख्त तनकीद की और कहा है कि इसने अपने मुल्क के खिलाफ नफरत को हवा दी है। काट्स ने एक्स हिस्पानवी जुबान में जारी करदा बयान में कहा है कि मुझे उम्मीद है कि बार्सिलोना जैसा अजीम और मोतबर क्लब इन बयान से लातअल्लुकी जाहिर करेगा और वाज़े करेगा कि दहशतगर्दी को भड़काने या इसकी हमायत की कोई जगह नहीं है। दूसरी जानब स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेस ने यामाल के दिफा में इसराइल को जवाब दिया और एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि जो लोग किसी रियासत का परचम लहराने को नफरत भड़काना समझते हैं वो या तो अपनी अकल खो बैठे हैं या नदामत के बायस अंधे हो चुके हैं। लामीन ने सिर्फ फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया है जो लाखों हिस्पानवी महसूस करते हैं और यही इस पर फख्र करने की एक और वजह है।
0: रूस ने जुमेरात की सुबह कई मिनटों तक सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से कीव पर बमबारी की जिसके नतीजे में कम से कम 5 अफराद हलाक हो गए। मास्को की जंग के खात्मे उम्मीदों को मजीद तार तार कर दिया गया है। AFP के साफी तारकों ने फजाई अलर्ट के सायरन की आवाजें सुनी। इसके बाद कई घंटों तक जोरदार धमाकों आसमान में चमकों ने कीव के बशिंदों को मेट्रो स्टेशन पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। यूक्रेनी फजाई ने इतला दिया कि रूस ने 675 हमलावर ड्रोन पर 56 मिसाइल दागे जिनका बेशतर हदफ कीव था। उसने कहा कि इसके फजाई दिफाई यूनिट्स ने 652 ड्रोन और 41 मिसाइल गिरा दिए। कीव के रिहायशी एंड्री ने सोवियत यूनियन के दौर की रिहाय